0: नरही से चावे मंगलवा उसका बेटे नवा और कैसे के मारो नजरिया.
1: Yes, all ladies, come close this stage, right?